नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजा जन आप सुहारी शिव गुण गो सब गुण सुख दियो सतरन गोपाल मोह वद कियो।

जानत। महादेव को कह सदाशिव, निरंकार का चिन्हित न पैव, आप अपनी बुद्ध है जीती, वर्णित भिन्न भिन्न तुहित।

मैं ना गणेश प्रथम नाउ किसन विसन कबहू न त्याऊ कान सुने बेचान तिन सो लिवलागी मोरी पग इन सो।

वह करे नानक जन संकेत तर पार जाते हो हर को नाम काम तीन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख रथा नाम की महिमा संतर दवासा संत प्रताप दुर्धव नासा संत का संकट पागे पाया संत की सेवा नाम तिया नाम तुल का शवरण हो नानक गोरमुख नाम पाव जन को श्लोक बह शास्त्र स्मृति पिख सर्व टोल पूज स्नाहि हर हरि नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब त्यान खट शास्त्र समृत वक्यान जोग अभ्यास कर्म त्राम क्रिया शक्ति अगुणवधि फिर अनेक प्रकार किए वह जतना पुन दान होमे वह रतना शरीर कर होम कर राति वरदनिम कर वह पाती नहीं तोल राम नाम विचार नानक गोरमुख नाम जप एक बार नाम खंड पृथ्वी फेरा चिर जीव महादास तप सरथि वग्न वाहि होमत प्राण कनक सब है भरपूमदा नियावली कर्म कर भवासन जैन मार्ग संयमत साधन निमख निमकार शरीर कटावताओ पी हाउ मैं वैर न जाव हर के नाम सम सरकाश नह नानक गुरमुख नाम जपत कत पाहि मन कामना तीर्थ दीह छुटाए गर्भ गुमान मंद छुटाए सोच कर दन सर राय तू मन की मैर न तंत जात इस देह का वह साधना कर मंती कब न विख्या टर जल तु वह दीह नियत शुद्ध कह हुई काच पीत मन हर के नाम की महिमा उच नानक नाम उदरी पतत वह मूज वह तु सियाण पजाम का पाव व्यापन जतन कर त्रसन्ना त्राप पीख अनेक अग्न नहीं बो जाय कुटे उपाय त्रगन से जाय शुभ स्नह उब पयार मुह व्याप हमारे जालवर कर दू सकल जम डान गोविंद भजन बेन तेर नहीं मन हर का नाम जबत दुख जाय नानक बोला सहज सुभाई चार पदार्थ जे को मांगा साजन के सेवा लाग जे को अपना दुख मटावे हर हना व्रत साध गावे जे को अपने सुभा लुरा सा संग हो मैं शोर जे को जन्म मरण ते डर साजन की शरण उपर जिस जन का प्रभु तरस प्यास नानु ताक बैल बल जा सगर पुरख मैं पुरख प्रदायन सा संग जा को मटे अभिमान आवस कर जो जाना नि चाह सब गन या सब दिव चाह जा का मन हुए सगल गिरी न हर हनम तिन का हट कर जी न मन अपनी तिबुरा मिटा न बीख सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टि त नानक उपाय पुन नहीं दे पा निर्धन को तन तिरु नाउन खाव को नाउ तिरथा न मन को प्रभु तिरु मान सगल कटा को दिवह दान करन करावन हार स्वामी सकल कटा के अंतर जामी अपनी गात मित जान हो आपी अपन संगा प्रवराधि तुमरी उस्तत तुमती हुए नानक वर्ण जान सुय सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जाम निर्मल कर्म सकल क्रिया महुतम क्रिया सा संग दुर्मत माल हिरिया सकल उदम उदम परा हर को नाम जप हो जी सदा सकल वाणी में अमृत वाणी हर को जा संरसन बखानी सकल थानते हो उदम थान नानक जी काट बसा हर नाम श्लोक निर्गुण यार यानिया सुप्रभ सदा समायल जिनकी आते चीत राख नानक निभ नाल अष्टपति रमैया के गुंचित प्राण कौन बोलते कम दृष्टान जन तू साज सवार स्वीकारिया गर्व अगन मंजन हो बारिया बार व्यवस था तो जह प्यारा दूध पर जो बन भोजन सुख सुध व्यर्थ पया ऊपर साक्ष मुख अपयाऊ बैठ कव दैन इहु निर्गुण गुण कठुना बुझ बक्षरी हो तम नानक सीज जय प्रसाद दारू ऊपर सुख बस है सोत प्राथमित बनता संहस है जय प्रसाद पीब शीतल जला सुखदायु पवन पाव कमला जय प्रसाद भोग हैं सब रसा सकल समग्र संग साथ बसा दिन हस्त पाव करण नियतर रसना त्याग संरचना ऐसे दोख मूड अंध व्याप नान का लिहु प्रव्याप आदि अंत जो रखन हार तेस सिंह प्रीत न कर गुवैर जाकि सिवा नव नित पावता समूढ़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर साध सदा जुरीता कहो अंधा जंत दूरे जाकि टहल पावे तर्ग मन तेह सारम दया जान सदा सदा कुलन है नानक रख नर अपार रतन त्या कौटी संग्रह चाय साज छोड़ झूठ संग माचाय जो छड़ना स्वस्थिर कर मान जो होवन सो दूर पर नय छोड़ जाय तुखा सराम कर संग सहाय दह पर हर चंदन दीप योतर तुय कर दो प्रीत पसम संग हुए अंध कुमे पतत विकरा नन का लिहु प्रभ दयाल कर दूत पशु के मानस जाल उचारा कर दिन रात बाहर भीख अंतर मल माया शब्द नाश कश कर छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्याप रूप स्मरण अंतरगन बाहर तन स्वाह कर पात्र कैसे तरह था जाक अंतर बस प्रभाव नानक जन सहज समाय तु सोना अंध कैसे मार पावे कर गहली हूड़ निभावे कह
कह बुझ अर्थ बुझ डूरा निष्कहि अतौ समझ पुर कह विष्ण पद कव गुण जतन कर तौ पी सुर पंकह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तुह उस गमन करता करुणा में दीन बेनती कर नानक तुम्हारी कृपा तर संग सहाय सुवन जीत जो वैरायु तस प्रीत बलवा के गृह पीतर वासन किरमा रंग रस दृढ़ कर्मा न मन प्रतीत कारण मुड़ी जीत वैर विरोध कायम क्रोध मोह झूठ बेकार महालोब द्रोह आहु जुगत बेहने के जन्म नान करिहु अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पैर दास जी उपिन सब तेरी दास तुम वायद पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मह सुख कनेरे कोय न जाना तुमरा दूजे दूजा भगवंत सगर समागरी तुमरा सूतर तारी तुम देव स्वाग्य कर तुमरी कात्मे तुम ही जानी नानक दास सदा कुरबान सलोक दीन हर प्रभु छूट के लागे हान सवाई नानक कहू ना सी जाय बिन नावें पद जाय अष्टपदी दस वस्तु पाछ पावे एक वस्त कान में खोड़ को आवे एक बिना दिए दस भी फिर लिए तव मुड़ा कहो कह करी जय ठाकुर सुना चारा ताकु की जय सब नमस्कार जा कमान लागा परा मीठा सर्व सुख तह मन उठा जेह जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया गनत साहु अपनी दी रास खास पीत वरत आनंद वरास अपनी अमान कह बहुर साहु दी अज्ञान मन रूस करी अपनी प्रतीता भी हुआ बहुर उसका विश्वास न हुआ जिसकी वस्ता तहागा रख प्रभु की आज्ञा माना मात है उसे चौगन करे हर नानक साहिब सदा दया रंग पदमय गीत सर पर्वत जान नित छाया सिंह रंग लावे ऊह बिन सह मन पुछता वै ज्योति स सुचल नार लपट रहे तहां दंद रूप टाऊ सिंह जलावे नीह ता कौ हाथ न वकीह मन हर कि न प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक बलय लाई मिथ्या तन तन कुटंब सुबाया मिथ्या होम ममता मय मिथ्या राज जोवन तन बाल मिथ्या काम क्रोध विकरार मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पीख हस्ता मिथ्या द्रोह मुह अभिमान मिथ्या वसु प्रकृत गुमैन स्थिर भगत साधु की शरण नानक जाप जाप जीव हर के जन मिथ्या श्रावण पनंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्ब कव हिर है मिथ्या नेत्र पीखत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसन भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बेकार कथा मिथ्या मान पर लोल वाय मिथ्या तान नहीं पर पुकार मिथ्या बाहरी बिकार बिन बुझ मिथ्या सब पै सफल दीह नानक हर हर नाम लय बिरथ सागत ग्यार जसा बिना कह हुवत सूचा बिरथा नाम बिना धनंत मुखावता का दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बृथ बिहार बीक बिन जो खेती जाय गोबत भजन बिन बृथ सब काम जो कृपन किन रार्थ दम तान तांति जन जिह काट वसु हर नाम नानक तक बल बल जाऊ रहत अवर कश अवर कमावत मरन प्रीत मुखम गंड लावत जन हर प्रभु परवीन बाहर बिहन काहु बिहन अवर अपदेश अपन कर आवत जावत जन ममर स्कंद्र बस निरंकार दुख सीख तारा संसार जो तुम पाने दिन प्रव जाता नानकोन जान चरण उपराता करु बिंद पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप माने आप है आप आप करदन वीरा कह दूर जनावत कह बुजावत नीरा उपैव से अनुसकल रहत सब कह जानया तुम की रहत जह पावत हलय लड़ लाय थान धनांतर रहे समय सो सेवक जह कृपा करी निमुख निमुख जब नान करी श्लोक काम क्रोध अर लोप मोह बिन सजय हमेव नानक प्रभु शरण आगति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपद जह प्रसाद शक्ति अमृत काहित ठाकुर को रख मन वाही जह प्रसाद सुगंध तन लावे तस्को सिमरत परम गत पावे जिह प्रसाद बस सुख मंदर तिहाय सदा मनंदर जय प्रसाद गृह संग सुख वसना अठ वैर सिमरत सरसना जय प्रसाद रंग रह भोग नन सदा तिहाई है त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पुटंबर हंडावे है तिसह त्याग तलभव जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन अठ भैर ताका जह गावी जय जिह प्रसाद तुज साब को मैन मुखता को जस रसन मुखान जिह प्रसाद तिरु रहता तरम सदा त्याई की पार ब्रह्म प्रभु जी जब तर्क मानु पावे हनानु पाद हित कर जाव जिह प्रसाद आरोग कंचन देह लेव लाव श्रम सनेही जिह प्रसाद तिरव ला रहत मन सुख पावे हर हर जह कहत जिह प्रसाद तिर सकल छिद्र टाक मन शरण पार ठाकुर प्रभु ताक जिह प्रसाद तुझ को ना पाहु चमन सा सा सुन प्रभु जे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ दी नानक ताक भगत करी जिह प्रसाद आपूखन पहरी जय मत सिमरत कुमार सुखी जय जय प्रसाद असव हस्ता सवारी
मान ते प्रभु कहो कबहु न बसारी। जे प्रसाद बाग मिलख तना राख पुरे प्रभु अपने मना जन तेरी मन बन तो बनाय उठ बैठ तो सत ते सहित आई ते सहित आई जे काल खै ई हाउ हनन तेरी रख जिह प्रसाद कर पुन बहदा न मनाष पर कर तुस्का ध्यान। जे प्रसाद तुआ चार ब्याव हरि तुह प्रभु कर सास साच कर। जे प्रसाद रसन रूप सो प्रभु सिमरहु सदा अनूप। जिह प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा धनराज। प्रसाद तेरी पात रह गुरु प्रसाद नानक जास कह। जे प्रसाद सुन करण नाद जे प्रसाद पीख बिस्मा। जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहज वसना। जिह प्रसाद हस कर चर जे प्रसाद संपूर्ण फर। जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सहज समावे है सब प्रभ त्याग प्रकात लाग। गुरु प्रसाद नानक मन जाग। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तेस प्रभ कहो मूल न मन हो बसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप पूरी मन मूढ़ तू ताप जब। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तसा जान मन सदा हजूर। जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्वराज। जिह प्रसाद सब की गा तू नानक जाप जपै जप सो आप जपाई जपै सो नाव आप गावाई सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा दिख प्रगाह प्रभु दया ते कमल बिगाह प्रभु सो प्रसाद वासा मन सो प्रभु दया ते मैं तू तुम हो सर्वन धन प्रभु तेरी माया।

नानक रचना प्रभ रचि वह विदान को प्रकार अष्टपति कई कोट हुए पूजारी कई कोट आचार व्याह हरि कई कोट वैद्य युक्तवास कई कोट बान ब्रह्मदास कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तुपी स्रोते कई कोट आत्म दिया अनंत रह कई कोट कव का बी तन कई कोट नव तन नाम दिया विनान करते कंद न पाव कई कोट पय अभिमानी कई कोट अंत अज्ञान कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिगा आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ कव हिर है कई कोट पर दूहना करह कई कोट माया श्रम वाह कई कोट प्रदेश परम वाह जेत जेत लाव तेत तेत लगन नान करते कि जान करता रचना कई कोट सिद्ध जाति जोगी कई कोट राज रह भोगी कई कोट पंखी सर्प अपाय कई कोट पाथर बिरखन बजाय कई कोट पावन पाण संतर कई कोट दीस भूमंडल कई कोट शशि अर सूर नख यातर कई कोट दीव दान इंद्र सिर शतर सकल समग्री अपना सूद तार नानक जह जह पावे ते सह नह तार कई कोट राज तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर सात कई कोट किए रतन संबद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जाख किन्नर पिसाच कई कोट पूत प्रिय शुक्र मृगाच सब दिन रह सब हुते दूर नैनका अलिप्त रह या पार पूर कई कोट पाताल की वास कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव हम रह कई कोट वह जोनि फिर है कई कोट बैठ थी खाही कई कोट काल थक पाही कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मह चिंत जह जह पाणा दह दह रख नानक साब किस प्राप के हाथी कई कोट पय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्राप कौ खो जंत आत्म मह पार ब्रह्म लहंती कई कोट दर्शन प्राप्या तिन को मिले प्रभ अमराह कई कोट मांग सद हंग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को हुआ सो प्रसन्न नानक तिय जन सदा तन तन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हो अवतार कई जुगत की न विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक एकंकार कई कोट किने वह पात प्रवत हुई प्रमाता कांत न जानक हुआ पिया नान प्रव सोई कई कोट पार ब्रह्म की दास तिन होत आत्म प्रकाश कई कोट दात की बीत सदा न हरह को नेत्र कई कोट नाम रस पीवा अमर पय साध साध जीवा कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहज समावे अपने जन को सा सा समारी नानक परमेश्वर के प्यारे श्लोक कारण कारण प्रभु एक है दूसरा नाही कोई नानक दिस बलहारण जाल थल महि गल।

हरि प्राण जपनान प्रबला कुबाणी बारं बार बार प्रभ जपी अपी अमृत हिमांतांतरपी नाम रतन जिन गुरु मुख पाय तुस की शावरना दृष्टा नाम तान नाम रूप रंग नाम सुख नाम का सांग नाम रस जो जान त्रिपता निमंत्र नाम नाम समान उठत बैठ सुबंध नाम कह नानक जान का सद काम लह जह जिह वैदन रात प्रभ अपना जान की निदात करहि भगत आत्म के जाय प्रभ अपने सिंह रह ही समाय जो हुआ हुत सो जान प्रभ अपने का गुम छान देखि मह मकान बखान।

करी करें सासु बाबा जहर की सरणी अन की उपाय भी रोग न जाए रोग मेट हर अवकत लाए सर्व निदान मह हर नाम दहा जब नान दर्ग प्रवान मन प्रभु दह हर कनाय दह दह ताव ताव ठय दा को बिग न लग को जाकर दा बस हर सोई कैलता तीठन रह नाम सिमर सिमर सदा सुख पाए।

सहज शुभ है, युताव शिव शक्त कहु के दठाई, जब आप है आप अपने जो तरह ताऊ कौन निडर कौन का डर, अपन चलताव करने आर नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपनासन, दह जन्म वरुण कहु का विनाशन, जब पूर्ण करत प्रभ सोई तब जम की त्रास, कहु के सहुए जब अवगत अगोचर प्रभिका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लिख जनाथ निरंजन अगोचर अगादी,

जहाँ स्वरूप केवल जगदीश है तह चारे चित लगत कह गीस है जहाँ जो स्वरूप जो संसमाव तह किस भूख कवन द्रव दव कर्म करावन करने नन करति का नह सुमार जब अपने सुबह अपन संग बनाय तब कवन वायु वा मित्र सुत पाय जहाँ सर्व कला आप है परवीन तह भी यदकती कह कुचीन जब अपन आप आप उतार तब सगन अब सगन कह भी।

करी हर के गुण गाय मन अंतर विश्वास कर मान्या करना नानक जानिया जान लागा हरी कहना दुखिया न बिरती जाय सेवक आओ सेवा बनाए हुकुम बूझ परम पद पाई ते ऊपर नहीं विचार जाक मन बस अंतरंकार बंधन दूर पै निर्वय रंधन पूज जह गुरु के पैर लोक सुखी है परलोक सुहेले नानक हर प्रव्याप वीर सा संग वीर करहु आनंद गुण गाव प्र परमानंद राम नाम तात करहु विचार दुर्लभ देह को करहु उदार अमृत वचन हर के गुण गाय उपरांतरण कह स्वाठ पैर प्रापी खो निरा मिटा ज्ञान पिन सा अंधेरा सनव देह हृदय साव मन छे नानक हर पाव

पवतन सुमाई। यस्ते हुए सो नाहि बुरा उरे कहु कि न काश करा परा कर तू तादनि किया पे जाने अपने जी की साप साच तारी सब साच आप जाने अपने जी की अब साच तारी सब साच उद्भूत अपन संग्राय ताकि आत्मित कहीं न जाए दूसरो यदा सोची पाए तो उसका किया सब प्रवान गुरु प्रसाना।

कह स्वभाव जनक संग चित्या बनाओ आप मुकुत मुकुत कर संसार नानक देह जानक सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभार अधिया पूरा जाका नाव नानक पूरा पाया पूरे के गुण गावि पूरे गुर का सनेपति सब पार ब्रह्म निकट कर भिक्षा सा सिमर गोविंद महाराज अंतर की उतराय जीवन दास नियत त्याग तरंग संत जनक दूर मर मांग आप छोड़ बेनती करहु साध संग अग्न सागर तरहु हर तन

कत न कथि न आवै तोट, कत कत कथि कोटि कोट कोट, देदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर काहि काहे, हुक्मि हुक्म चलाए राहो, नानक बिकसै वे परवाहो। साचा साहिब साच नाइ पाख्या भाउ अपार, आखै मंगै है देहे देहे दात करे दा तार, फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार, महौ के बोलन बोलियै जित सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच नाउ वड़ियाई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवै जानिए सब आपे सचियार, थापिया न जाए किता न होए आपे आप निरंजन सोए, जन सेव्या तन पाया मान, नानक गाविया गुणी निधान। गाविया सुनिया मन रखिया भाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए, गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई।

अनासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्धा बुद्धा प्रत करता दौर दर्दंग अगंगो भरता परम परम परमेश्वर ब्रोषपालंग सदा सर्वदा सदाता दयालंग आशेदी अभेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्ता सता मंतेरा जोर चाचरी शांत जले हैं थले हैं पीते हैं पे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेश हैं जंग प्रयात शांत अगाधे अबाधे नंदी स्वरूपे नम सर्वाने समस्ति निधाने नमस्तों नरनाथे नमस्तों परमाते नमस्तों गंजे नमस्तों पंजे नमस्तों काले नमस्तों पाले नमो सर्वदेशे नमो

सदैवं स्वरूपैं भेदी अनूपैं समस्तो पराजैं सदा सर्वसाज हैं समस्तर सलाम हैं सदावल काम हैं निर्भय स्वरूप हैं गाध हैं नूप हैं ओंगाद रूपे नार स्वरूप हैं नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामी।

हालात सही हो जाने। पातशाह कहिंदे ने परमात्मा बड़ा दयावान है, तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा। जिहड़ा हिरदा उहदे चरणा विच आ के अरदास बेनती करदा है, वह दुख सुख सुनदा है, उहदे हालात वधिया बन जांदे ने, उहदे जीवन दे विच सुख आ जांदे ने। क्यों? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का यह सुभाव है, जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी, तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तौबिद नेकी खटानी, जी की एक ही पहमानी, अवर जतन कर रहे बहुत तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। अगलियां पंक्तियां विच पातशाह प्रमाण करदे ने, हे मेरे वाहिगुरु, साडे जीवां दा इक तू ही माण है, ताण है, बथेरे जतन करके देख लै, परमात्मा तो बगैर किसी ने एक तिल जिनी कीमत नहीं पाई।

0: कबूल न चुवे।
1: प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सह समानी।
0: प्रभ कै सिमरन निचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन।
1: प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार।
0: सिमरन सीजन जिन का पम मया, नानक तिन जन सरनी पया।
1: हर सिमरन कर पग पटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए।
0: पे सद जति दाते, हर सिमरन नीचों कट जाते।
1: हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना।

0: के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पतत बहुमूच।
1: मां श्याम जनका पौ व्याप, अंत जतन कर कृष्ण ना त्राप।
0: एक अनेक अगन नहीं बुझे, कोट पाप दरगह नहीं सिजे।
1: छूट स्नायु उपयाल, मोय व्यापे माया जाल।
0: अवर करतूत सगले।

0: जय प्रसाद पसी सुख मंदर तिसी त्याई सदा मन अंदर।
1: जय प्रसाद ग्रह संसुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना।
0: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग।
1: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग कत अवर लुभावे।
0: जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस गवी जय।
1: जय प्रसाद तुम सबको माने मुक्ता को जस रसन।

0: तिस राम स्नेही
1: जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत।
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिदर ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताके।
1: जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊँचे।
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भक्त करे।
1: जय प्रसाद अपूखन पैरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय।
0: जय प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस पाप को कबू ना बिसारी।

0: सुप्रभ सिमर सदा दिन रात।
1: जय प्रसाद तेरी पत रहे गो प्रसाद नानक जस कहे।
0: जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद पेखे बिस्माद।
1: जय प्रसाद बोले अमृत रचना जय प्रसाद सुख सहजे वसना।
0: जय प्रसाद हस्त कर चले।